0: गुलजार नार सिंगार तरुण खूब नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूब नटली
1: चले चमक चमक दावे धमक धमक चले चमक चमक दावे धमक पाहुन मते फुटली।